0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक
2: नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: अल्ला क्यालाई बस्या छौ ठुस्के एक दुई प्याकलाई हुस्के हिट तानो कन्फिडेन्स जुलाई लेले गर्छौ मुडा लेट्स रॉक।

0: रेडियो मध्य पश्चिम
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़नी नसा प्रसुति

0: 94.4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुघाखोकी, नाकबन्ध, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल, जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल, मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर, हस्पिटल रोड, कुराहीदान। फोन नम्बर 082-585-2110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि, निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक, र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव, बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सड़क विभाग ओरालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 082-585-2118।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुडी।